जहाँ जाओ, जितना समय जाओ, जैसे जाओ वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो, कहाँ भी मन या वहाँ चंचल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा। आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवे बन की, कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे, तब समापति समय बुलाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगा हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण नहीं बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो। पहले इन चार बातों की रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसी सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबू

बच्चों को याद करती है, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चे।

Berlin am

Radio.

अभी आगे के लिए।

आप लोगों के भाग्य के आगे उन लोगों बेचारे सब

लेकिन अभी ऐसा समय

0: estaba buscó al bocadero. Al papá de mi que afecta o te huevi pachone pechana और सेवा का भाग्य भी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yes.

0: अपने चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और बरकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले, ये तो बाप समान, ब्रह्मा बाबा जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते है भी और होनी है। टीचर्स आधार मूर्त है, जैसे बाप के लिए कहती है ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप के कदी आप टीचर्स को दिए बैठने के लिए, सुनाने के लिए निमित टीचर्स बाप की गद्दी मिली हुई। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्द पा दिया। बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते महानो महत्व वाले है ना। ऐसे है। कभी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट लेवे सर्टिफिकेट बाप दादा तो देखते रहते हैं। क्या बकरी, ये तो बकरी हुई पहले ही है, बकरी हुए को क्या बकरी, श्रेष्ठ नजर से देखते। अच्छा अच्छा, बहुत आई है टीचर्स में फॉरेन की।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? See you.

0: bellos guía.
1: Me la gana.

so much, Nissi.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको

तो अपार की दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक पापा का बच्चा है। पापा को सामने लाओ, उसके करते को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख

0: जाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, भ्रमण जीवन कितराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते, कभी वो भी समय आएगा। जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं आओ। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं आओ। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा और करता क्या। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगा दिया ना, उल्टा सुल्टा भी लगा दिया। होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर, सहयोगी बनाए है उसकी मुबारक है और बनाओ। सेवा में कोर्स कराने चाहिए। इससे साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात पाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Manco. सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है, सिर्फ उसको प्रैक्टिकल पे लाना है। है ही सफलता स्वरूप, स्वरूप ही सफलता है।

वरदान स्मृति में रखना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्मृति असफलता की बात को भी सफल

0: ज्यादा सफलता स्वरूप हूँ। ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये सदा स्मृति में रख, तो जो भी कुछ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: एजुकेशन चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, जिला जिला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी फ्री होके पढ़े और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है। कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है तो लोगों को उमंग उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो ऐसा किताब निकालो और अपने अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद कर

Все бабы куда их? Сами. Садакуш. जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के

और बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही है।

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल

0: Pirene i सत्ता बच्चे पीरेने।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

जा मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जा मेहनत।

0: समय पर कार्य में लगाओ। हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी सहज पेतीवर भी दृढ़ता को यूज करो,
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

में वो खुशी की झलक सेवा पुंज बन रहा है। उसमें चेहरे में खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट कोई न कोई बात का अलबेलापन जब करना ही है खुशी से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सर नहीं, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सर नहीं, याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई बुशारत नहीं कर, नील के सागर में समा जाओ। कभी कभी बच्चे और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं, बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल। समाते रहो परिवर्तन किया। अपने जन्म की आद का समय अनुभव याद है ना, ज्ञान और योद्धों मिला, लेकिन सने ने

0: ataque lies. Men at the same Mukto Jang. Vesebi Mukti Varish Manarena. Men at the Sebi Mukta. Uska Sadhana. Sani me samaya wale sani kaanpo sabhi ko hai na ke nahi hai agar kisi se bhi puchenge Bab Dada, Sister Day, Subsistia, Kiskai, Sabia to tell you, Mira, Essen, Anna. Silence ka hatu tau Awas wala di Sab ka To bab dada aaj ki kehti hai Sane ki shakti Yok lagati ho Te bulje Te ki dunya bulje Maya Jit bane Jab sanay ki chatr chaya me rahenge सनील की चत्र छाया की अंदर माया नहीं आ सकती सनील की साखट से पहराती हो ना तो माया लेती है और अपना बना देती है निकलो ही नहीं समाए रहो सने ही कोई भी कार्य करते हुए सने ही को नहीं भूल सकता सने में खोया हुआ हर कार्य करता जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या सने Aman Sage Banadik. You just his heart son here. Was just happening now. He must say
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

egoist.

personal

Çıkış.

Good evening.

さあ。

0: सारे चक्कर में इतने श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Not सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ने पोजिशन तक पहुंचा दी है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप हर एक बच्चा अपने को मानक

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन सामना करने की शक्ति। चार ही सब्जेक्ट में समृद्धि स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा सब

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू याद करते हो थक गए अभी क्या करे, थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा उठते जागते कर्म करते सेवा करते सोते साथ देने के लिए आइए परम धाम छोड़ के क्यों आए, साथ देने के लिए ही तो आई है। इसीलिए आप सबके सहयोग देने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त बने, व्यक्त रूप में और अव्यक्त रूप में सहयोग की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया। शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, सेवा सेवा सेवा सिर्फ वही याद है, बाबू को किनारे बैठ देने के लिए अलग कर देते हो, बाप भी साखी होके देखते है, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यही तो साथ नहीं छोड़ो।

0: ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान सात का ऑफर कर रहा है, ऐसी ऑफर सारे क्लब में मिलेंगी नहीं मिलेंगी ना, तो बाप दादा भी साखी होके देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। संगम युग के सुख और स्विचों को इमर्ज रखो, बिजी होने के कारण बुद्धि बिजी रहती है ना, तो स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है, बोलता है बाप, तो क्या कहेंगे? नो। अच्छा ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन ये मर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है, स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति और मर्ज रूप की स्थिति, इसमें अंतर है, है, है अंतर, है पांडव, है अंतर। तो क्यों नहीं इमर्ज रूप में रखते, इमर्ज रूप का नशा शक्ति संयोग सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है, चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकते, ये राइट। हाँ कोई विघ्न की वश हो जाती है तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जो नेचुरल रूप में रहते हो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये नहीं है लंदन में बोली बाजी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो, मैं कौन, मैं फ्रिस्ता, यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, पक्का। सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सोचो आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और बने हो, देवताएं बने हो, अच्छा सुंदर। के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया कुमारियां बैठी है ना। रॉयल्टी है ना आपकी, फिर अंत में संगम युग में भी आप सब

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की, तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपस में रहे सलाह, जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दी हुई सौगात कोई वापस लेते है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है, लेकिन आ जाती। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है, मानते भी है, लेकिन क्या करे वापस आ जाते। सोचो दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास? से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वो करने चाहते हैं। ये बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है को यूज करो। संकल्प करते हो लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प। सफलता की चाबी आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है उसकी निशानी है दृढ़ता, सफलता की चाबी। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सेज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सेज चाहिए ना बाप दादा, यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है श्रफ, चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे,

0: Baby. Το χιλιάδρακο. Μοίρα καρταφιακιά.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझना

में वृद्धि रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई भी

Joe.

बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख खुशी।

0: योग से काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। एक दो को देख उनकी विशेषता को देखो, दूसरी बातों को नहीं देखो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेंटर तो सब सेव है,
3: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
2: फिर भी बॉम्बे बाप का है ना, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
3: कुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
2: इससे बहुत कुछ होना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: It's sun.

0: उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई। और उस सरकमटेंस के ऊपर मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्यों चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yes.

0: संकल्प सर्वशक्तिवान बनत।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ समय से लेकर

साधारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखदे वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ।

0: चल कि समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थ ही एवर रेडी बनने में समय लगा देना। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और फुल स्टॉप कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कामा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिले। कोई भी बच्चा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा।

तुम्हारे के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा क्योंकि

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ओके लिख के
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संग

discoteca perché cammi a panir pulsar kine leke nam me man me shan me pochne me aage aane me center in charge banane me seva me विशेष पाठ देने में ये कमी ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान और

शिवा पर जाओ तो चीख करना एक दिन में इन दोनों में से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जाती है

0: said, Queen Bashungu, Janwar ko adat dal do apne ghar mein aane ki. Phir tango ke bagao bhi. Lekin adat to par jaati hai. दिक्कत के समझ के फिर कुछ भी कर्म करो, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वास्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप कर्म हो जाता। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन

0: प्रसारण हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडोको भी शरद पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरद पे आगे बढ़ाओ, जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो, उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोग।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना, और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाए। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक, समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखे। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का। सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, आचार करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लदा बच है। इसलिए अपने सिक्की लदे बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ है। लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sa

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Nice.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बिल्कुल साफ है, फिरत से और पीती से सबसे सूखियम रूप है, वेब्रेशन के रूप में रह जाता है,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम ऐसा कर और आप आकार और निराकार, अभी साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ, एक चाहिए, देखना बाप दादा तो कहते एक चाहिए, योग लगता नहीं है तो क्या करें, उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए क्या कहते हैं, डॉक्टर और ठीक करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, सामने उल्टी करेंगे सोचो पाप की आखिरी उल्टी करेंगे नहीं करेंगे तो कहाँ करें। कोई स्थान तो बताओ ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी। अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथी है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, जो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। दीवर पुरुषार्थ बच्चों,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्राह्मण जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देख कोई कोई के चेहरे जो होते है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानती है तभी हंसती है। युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी See?

Siete.

Epa.

ऐसे सिस्टम में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Rose.

संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, बुरे संकल्प कब है व्यर्थ ज्यादा

sip.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

be a shut bojan swikar nahi karna. To dhrit ta majority baap dada ne dekha. Isme जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन संकल्प करना है कि कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी

और सहयोग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते।

सकते हो। हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है। पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं, फिर से उठा।

ने भी हाथ उठाए। उन सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं। मुबारक के साथ

すっ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? स्मृति स्वरूप

स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड समझते हैं कभी कभी।

0: सब का साथ है और अविनाशी साथ निभाने वाले बाबा कहा और बाबा हाजिर है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे
2: स्वभाव के स्वरूप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

awesome.

같이.

But

0: Attention,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? बड़ी परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल की है, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएंगे। तो आप भी ये गलती करते हो, सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्ति स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते हैं। सीट है तो अपसेट नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: विश्व

Cícaro. Dinos.

interessante. Tu, a fijar, pa' chico.

जब से आते हैं तो

अटेंशन, उस हलचल में

विश्व कल्याणी का स्वरूप।

Eski. अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो दरअसल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो तो जाने हो सेंटर पर कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
3: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती। अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा ही हो, विदेशी आत्मा नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया। भाषा और देश की शाखाएं, आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तीन मास का अभ्यास, सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया, तीन मास पास करने हैं फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Oh.

久。

Johnny, mitä he?

小。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा, तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर से,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: diciendo a mí, Barbar, hártenme, samé, perdón, samé.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबे ले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला पन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर देने का दिवस आ जाता।

Yes, sir.

Advertí, te vas. Pachuque.

Ha ha.

Tessin. Okay.

Radio.

encore. Suddenly,

Leben. Warte dir. Jobber Jam.

0: calle. Vocês pra todas colaborar voltar-nos cá Chuchaye Chitnachaye Utna Praptonika Slyšte ty vás
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आए ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Rat Sangalam.

Stats.

Yeah.

जो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देवान भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के समय पर मान, पाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Peace.

में पाप के साथ।

0: साकार में आ जाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात हो समा देना, अंदर मन में बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष
0: शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Come on।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक दिन में कितना भी बड़े दिन बड़ा मुश्किल है नहीं ना कि बिंदी के खिसक जाती है। बाप दादा ने कमाई का साधन श्रम
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार विरखा होता है ना, तो बीज उसमें छिप जाते हैं। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जब खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे सभी पाप के कौन हो, राइट हैंड हो ना, राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो दिलाएंगे ना। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे, कितने तरफे आप ही सभी हाथ तक की बातों से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में हद के संस्कारों में समय नहीं।
0: सुनते रहे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे क्या करते हैं? कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

0: बोध करने का। रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना, कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। रिपीट करना है, ये स्मृति रखो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वयं को और तो snake.

0: वर्तनी आत्मा बन जात। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते और दूसरों को भी योगी बनाने की सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आती है सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज कर लो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी जाके पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Peace.

Coração.

Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Bye.

समान बनने का और लक्षण रहे।

मिक्स हो जाते हैं ना अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं।

0: और संस्कार बनते कैसे है वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा यही चाहते हैं। कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी बंधन Nevada।

Você.

सर्वशक्तियों का वरदान दिए, सर्व गुणों का खजाना दिए। खजाने को यूज करने से खजाना पड़ता है। खजाना है, सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में तीन प्रकार के दे। सबसे ज्यादा

0: अब ही जान से फिर चांस भी खत्म हो जाएंगे, चाहेंगे खजाना बनाए लेकिन बना नहीं सही।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो सफल बनो, जो भी खजाने so

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

0: इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार
1: इसलिए

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ

0: शरारत कर रही है। जमा का शरारत आप ही कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट।
3: अच्छा,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुष।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

समझते हो, व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वो कहे मैं, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय पहुंच जाता है।

और आपका इस समय की परमा

Tenéka. Do fiat sancalap.

0: अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो।

Sante, Bapta, Sante.

0: kehidupan kita tersinat mas kebibi koi sama siami parishan nahi ho sakti sama siami takt ke niche reh jayenge aur aap upar takt nashin ho samasya aapke liye sir nahi utha sakenge niche dabe rahenge aapko pareshan nahi kare और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा खत्म हो जाएगा ना दरिया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: I'm

Wolfbrain.

Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है। सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को, बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है, क्यों ये क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो, क्यों शब्द इंग्लिश में लिखो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। इस क्यों शब्द की क्यों खत्म करो, तो जो आप सबकी

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: करते

उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए अपने किरणों द्वारा

0: शंदर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है। साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे, पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। ओ मां गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादियां स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Oh, shit.

आगे चल कर के जो समय आने वाला है

सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

संकल्प सामने लाना। और रोज अमृत वेले दोहराना। जी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: व्यक्ति भी है मटे मटे मटे में मिल जाते, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे के अज्ञान से ले आता है।

0: ध्यान पढ़ने वाला कौन? तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता या दाता अच्छा लगता? तो लेवता के पीछे क्यों?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।